सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 20, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 5:59 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगी हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बरसी थी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है ब्रह्म शक्ति।
3: श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सांप के दांतों में विष है, लेकिन जब वो स्वयं खाता है तो उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वो उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। ये देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने लगे और नाचने लगे। उनकी ये अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वो जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण ये संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार ये संसार सत्य प्रतीत होता है, पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरि जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वो अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है, तो वो बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि का मुखौटा हट जाता है तो तुरंत वो घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है, अरे ये तो भैया हैं। मनुष्यों का भी यही हाल है। माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से ये माया का पर्दा हट जाता है तब वो भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता, तब तो अपने ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर हमें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर हम पानी देखना चाहते हैं तो तालाब पर से काई हटा दें। माया के पर्दे से ढके हुई आंखों से देखकर हम लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर हम ईश्वर को देखना ही चाहते हैं तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा लें। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं।
2: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, शीर्षक था ब्रह्म शक्ति। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में लता मंगेशकर और साथी की आवाजों में ये भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और साथी की आवाज़ों में ये भक्ति गीत।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 404 404।

सबको व्याप्त है, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाए तो मिट जाए, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मन रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, हम आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आवाजी दिल्ली केंद्र से। 7 बजे का समय होगा लोकगीतों का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। 7:20 पर आप सुनेंगे विज्ञान वार्ता, हवाएं क्यों चलती है। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे, इस विषय भी जानकारी देंगे विवेक कुमार तिवारी। 7:30 पर आप सुनेंगे गीत संगीत कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, और 8:30 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

9 बजे आप सुनेंगे हमारे हजारीबाग केंद्र से मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। 10 बजे सुबह आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम

10 बजे आप सुनेंगे हेलो हजारीबाग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा डिजिटल सुरक्षा और साइबर जागरूकता, और भी आप सुन सकेंगे जानकारी की बातें और गीत संगीत तो सुनेंगे ही। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से लेकर 2:55 तक आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे दोपहर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे आप सुनेंगे, 4 बजे शाम आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 से लेकर 4:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:30 से लेकर 4:05 तक आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। छह बजे का समय होगा खेती बाड़ी कार्यक्रम का। चर्चा सुनेंगे प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक लाभ। 6:02 पर आप सुनेंगे युवाड़ी कार्यक्रम। चर्चा सुनेंगे युवा और रक्तदान, स्वस्थ समाज की ओर एक कदम। 6:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनेंगे। 7 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे झनकार कार्यक्रम। 7:30 पर सुनेंगे और टाइम हिट्स कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे कानूनी सलाह। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता बाल श्रम अधिनियम 1986 प्रथम प्रसारण आप सुनेंगे। भेंट वार्ताकार होंगे अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार एवं प्रियंका कुमारी। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार की 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। 9 बजे सुनेंगे News@9। 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती कार्यक्रम सुनेंगे मुंबई केंद्र से। रजनीगंधा कार्यक्रम आप सुनेंगे 10 बजे हमारी हजारीबाग केंद्र से। 10:30 से आप सुनेंगे ए फिल्म से कार्यक्रम। 11 बजे हिंदी समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

प्रारब्ध है प्रधान जगत में, लाल बिहारी सच सुना दिल का, हो गया उदंड का।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे लोकगीतों का।

0: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
1: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन।

आप सुन रहे थे लाल बिहारी साहब की आवाज में ये लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है विज्ञान वार्ता, विषय है हवाएं क्यों चलती है। लीजिए सुनिए, वार्ताकार है विवेक कुमार तिवारी।
1: सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार तिवारी आपके समक्ष आज का विषय हवाएं क्यों चलती है पर विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। हवाएं क्यों चलती है, इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि हवा किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी गैस अणुओं की परतों से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना होता है। जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हवा क्यों चलती है। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो इससे वायुमंडल भी गर्म होता है। जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वह गर्म हो जाते हैं और जिन हिस्सों पर तिरछी किरणें पड़ती है वह ठंडे रहते हैं। पृथ्वी की सतह गर्म होने से हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की हो जाती है, इसलिए ऊपर उठती है और फैलती है।

उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है, तो इस तरह हवाएं चलती है। पृथ्वी के चारों ओर हवा निरंतर चलती रहती है। गर्म हवा का ऊपर उठना तथा ठंडी हवाओं का खाली जगहों को भरने के लिए आगे आना, यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। सूर्य की गर्मी से धरती और समुद्र के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर गर्म होते हैं और इस तरह धरती पर हवा का बहना निरंतर जारी रहता है। हवा के बड़े बड़े हिस्से को एयर मास या वायु संहिति कहते हैं। यह अपने पास स्थित धरती या समुद्र के जिस हिस्से के ऊपर से गुजरता है उसी स्थान के तापमान के अनुसार गर्म, सूखा, ठंडा या नम हो जाता है। तो आप लोगों को पहले ही बता दें कि हवा बनती नहीं है, ना ही हवा खत्म होती है। बिल्कुल आत्मा की परिभाषा की तरह लग रहा है ना, परंतु यह सच है। तो अब यह सवाल उठता है कि जब हवा बनती नहीं है तो फिर चलती कैसे है? तो आइए इसका जवाब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सीलिंग फैन या टेबल फैन से जानते हैं। हवा वातावरण में पहले से मौजूद होती है। जब पंखे को कोई भी चालू कर देता है तो पंखा पीछे की हवा को आगे कर देता है। पंखा जितनी तेजी से घूमता है उतनी ही तेजी से पीछे की हवा को आगे करता जाता है। इस प्रक्रिया में हवा की मात्रा उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, बस अधिक हवा आपके शरीर से टकराने लगती है जिससे यह एहसास होता है कि हवा तेज चल रही है। इस तरह कह सकते हैं कि हवाओं को चलने में वायु दाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु दाब भी दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च दाब और दूसरा निम्न दाब। निम्न दाब वह स्थान होता है जहां से सूर्य की गर्मी के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठता है तथा उच्च दाब वह स्थान होता है जहां के खाली स्थान को भरने के लिए वायु नीचे की ओर आता है। अब ये जानते हैं कि हवा आखिर और कहां कहां से आती है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस पदार्थों से बना है तथा जलमंडल जल से बने हैं। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसका ठीक ठाक पता नहीं है, पर निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्दिक कई सौ मीलों तक ये फैला है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। वायुमंडल को पांच विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल तथा अंतिम बाह्य मंडल। आज हवा के अन्य मुख्य घटक जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है, जिसमें से मुख्यतः जेट स्ट्रीम, मानसून तथा कोरियोलिस प्रभाव है। पहले हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम का संबंध हवा से क्या है, इसकी विशेषता, इसके प्रभाव क्या है, साथ ही जलवायु संबंधी इसकी महत्ता क्या है। जेट स्ट्रीम एक भूस्थैतिक हवा है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों से होकर क्षैतिज रूप से बहती है। आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर बहती है। यह वहां विकसित होती है जहां अलग अलग तापमान वाली हवाएं आपस में मिलती है। इसलिए सतह का तापमान यह निर्धारित करता है कि जेट स्ट्रीम कहां बनेगी। तापमान में अंतर जितना अधिक होगा जेट स्ट्रीम के अंदर हवा का वेग उतना ही तीव्र होगा। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैली हुई है। जेट स्ट्रीम की जलवायु संबंधी महत्ता भी बहुत अधिक है। कभी कभी जेट स्ट्रीम समताप मंडल में कुछ नमी लाती है जिससे नॉक्टिलुसेंट बादल का निर्माण होता है, मतलब ऊपरी वायुमंडल में बादल जैसी सूक्ष्म घटना जो गहरे धुंधले में दिखाई देने वाले बर्फ के क्रिस्टल से बनी होती है। आपको बताते चलें कि मानसूनी हवाओं के आगमन और वापसी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी गति में भूपरपट्टी और गर्त निर्माण के साथ वैकल्पिक चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती स्थितियों को तीव्र बनाता है। जब वायु द्रव्यमान गतिमान होता है तो यह बारी बारी से विस्तार और संदीपन से गुजरता है, जिसका अर्थ है कि यह बारी बारी से उच्च दबाव और निम्न दबाव से जुड़ा होता है। अब जानते हैं जेट स्ट्रीम की विशेषताएं क्या है। औसतन जेट स्ट्रीम लगभग 110 मील प्रति घंटे की गति से चलती है,
लेकिन गर्म और ठंडी हवा के द्रव्यमान के बीच नाटकीय तापमान अंतर जेट स्ट्रीम को बहुत अधिक गति से चलने का कारण बन सकता है, जो लगभग 250 मील प्रति घंटे या उससे भी अधिक हो सकती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम एक ठंडी हवा है जो हवा को सतह की ओर धकेलती है, जिससे सतह पर उच्च दाब पैदा होता है। इस उच्च दाब क्षेत्र से शुष्क हवाएं निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने लगती है। सरल भाषा में कहें तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये हवाएं उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के उत्तरी भागों में शीतलहरी लाती है। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के बाद फेरेल सेल के प्रभाव से पश्चिमी हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून का रूप ले लेती है। जब यह हवा तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त आर्द्रता के साथ वर्षा करती है। यहाँ एक सवाल और दिमाग में आता है कि समुद्र में हमेशा हवा तेज क्यों चलती है? क्योंकि समुद्र का पानी सूखने और गर्म होने की प्रक्रिया धीरे होती है और यह गर्म और ठंडी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच गतिमान हवा की प्रवृत्ति बदलता है। जब गर्म हवा समुद्र के पानी के ऊपर होता है तो यह उसको गर्म करता है और ऊपर उठता है, जिससे तेज हवा समुद्र में हमेशा चलती रहती है। अब हम जानते हैं कि मानसून और हवा का संबंध क्या है। मानसून पूरी तरह से हवाओं के बहाव पर निर्भर करता है। आम हवाएं जब अपनी दिशा बदल लेती है तब मानसून आता है। जब यह ठंडे से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है तो उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वर्षा होती है। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसमी हवा है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रिटिश भारत में एवं पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए प्रयोग हुआ था, जो दक्षिणी पश्चिमी से चलकर इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती थी। हमने देखा कि जब हवा की दिशा बदलती है तो मानसून आता है। तो आखिर कैसे बदलती है हवा की दिशा? होता क्या है कि हवा हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर जाती है। इसके साथ ही धरती का रोटेशन, मौसमी प्रेशर, गर्मी की वजह से हवा का रुख बदलता है। ये हवा धरती के रोटेशन के आधार पर प्रेशर और हीट के साथ मिलकर अपना रुख बदलती रहती है। ये हवाएं भी कई तरह की होती है जो मौसम पर अपना प्रभाव डालती है। मौसम में होने वाले अधिकतर परिवर्तन हवा की वजह से होते हैं, यानी हवा का दबाव आदि मौसम के बारे में बताते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि मौसम विभाग के लोग हवाओं की प्रेशर आदि को देखते रहते हैं और समझते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा। अब हम आगे कोरियोलिस प्रभाव और हवा के बारे में जानेंगे और इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आखिर हवाएं क्यों चलती है। पृथ्वी के घूमने का मतलब है कि हम एक स्पष्ट बल का अनुभव करते हैं, जिसे कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि निम्न और उच्च दबाव प्रणालियों के आसपास हवा का प्रवाह प्रत्येक गोलार्ध में विपरीत दिशाओं में घूमता है। कोरियोलिस प्रभाव का सबसे आम उदाहरण पृथ्वी पर हवाओं के विक्षेपण के माध्यम से देखा जाता है। इस प्रभाव का एक और उदाहरण एक सामान्य खेल के मैदान के गोल चक्कर को देखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यदि आप एक घूमते हुए गोल चक्कर के बीच में खड़े हैं और गेंद फेंकने का प्रयास करते हैं तो यह दाईं ओर मुड़ती दिखाई देगी, जबकि वास्तव में यह गोल चक्कर पर ना खड़े किसी भी व्यक्ति को सीधी रेखा में यात्रा करती दिखाई देगी। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होने वाली घटना के समान है, जहां हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती है। यह विक्षेपण यह समझाने के लिए एक प्रमुख कारक है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं निम्न दाब के चारों ओर वामावर्त और उच्च दाब के चारों ओर दक्षिणावर्त क्यों बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत कोरियोलिस प्रभाव

0: के बिना हवा सीधे उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्यों जाती है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर भी यह कुछ ऐसा है जो प्रकृति में हमेशा होता रहता है। चीजें हमेशा समान होने की कोशिश करती है, इसे विसरण कहते हैं। लोग भी ऐसा करते हैं। जब लोग बस में चढ़ते हैं तो क्या वे सभी बस की एक तरफ ही बैठते हैं? क्या अजनबी लोग एक दूसरे के बगल में बैठते हैं जबकि बस की बहुत सारी सीटें खाली हों? तब बिल्कुल नहीं। लोग जितना संभव हो उतना फैलना चाहते हैं। हवा भी बिल्कुल वैसी ही है। अगली बार जब आप हवा का बहाव महसूस करें तो सोचें कि वह कहाँ जा रही है तथा कौन से तापमान और दबाव के कारण वह ऐसा कर रही है। तब आपको सचमुच यह पता चलेगा कि हवाएं क्यों चलती है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता के अंतर्गत वार्ता, विषय था हवाएं क्यों चलती है। वार्ताकार थी विवेक कुमार तिवारी। क्या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है गीत संगीत, उसके पहले लीजिए सुनिए जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे गीत संगीत कार्यक्रम में अभिजीत की आवाज में कुछ गीत। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने

0: करने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

0: किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister

0: हैं। श्री मोदी ने लगातार 4,399 दिनों का निरंतर कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,388 दिनों का था। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जमशेदपुर के सिंहभूम ताम्रपट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय माइंस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे और देश का तांबा उत्पादन दो गुने से अधिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विषयवार समीक्षा किए हैं, SBM का अलग किए, JJM का अलग किए हैं, DMFT फंड का अलग किए, राज्य योजना का अलग किए, कई दिशा निर्देश भी, कई सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, कई विषयों पर तत्परता से कार्य करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। उस पर हम लोग पालन करेंगे। हर हाल में राज्य के अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे मिले, इसके लिए सरकार और विभाग निरंतर प्रयास कर रही है।
0: झारखंड के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं जल्द सुदृढ़ होंगी। राज्य सरकार ने 8 वर्ष से अधिक पुराने या 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंसों को हटाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को 1 सप्ताह में ऐसे वाहनों की समीक्षा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने अपना फैसला आज सुबह 11 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इधर परिमल नाथवानी की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष सभी आपत्तियों का जवाब दाखिल कर दिया है।
3: ये जो भी उनके क्वेरीज थे, ये क्वेरीज नॉमिनल क्वेरीज रहते हैं, जो रिटर्निंग अफसर को पावर भी है और किसी के शिकायत पर भी रिटर्निंग अफसर 36 सेक्शन के तहत वो कर सकते हैं। हम लोगों ने परिमल लखमानी की तरफ से सारे सूचीबद्ध तरीके से हमने एक एक पॉइंट को रिटर्निंग अफसर को जमा कर दिया है। अब कोई त्रुटि नहीं है, जो शिकायत किया गया उसको हम लोगों ने त्रुटि को दूर कर दिया।
0: नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित झारखंड भवन का औचक निरीक्षण रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने किया। उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा और अतिथि सुविधाओं की समीक्षा करते हुए बंद पड़े CCTV कैमरों को तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही भवन परिसर में लंबे समय से खड़े 6 अनुपयोगी वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: राज्य के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अब तक 59,340 BLA2 नियुक्त किए हैं। इसमें भाजपा ने 21,645, कांग्रेस ने 17,479 और झामुमो ने 14,482 नियुक्तियां की हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के लिए उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के कर्मियों की 24 घंटे तैनाती की जाएगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के भीतर मॉनसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस बीच कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो समेत राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से रांची के JSES स्टेडियम में आगाज होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 14 दिनों के भीतर कुल 27 रोमांचक मुकाबले होंगे। खिताब के लिए कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। लीग की पूर्व संध्या पर रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयी।
5: यंग टैलेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और यंग टैलेंट्स को हम इंस्पायर भी कर सकें, इसके लिए 600 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मैच को लाइव देखने के लिए स्टेडियम में। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चालू किया है। देखते हैं, फर्स्ट मैच के लिए तो अभी हुआ है, आगे भी और कोशिश करेंगे कि और मैचेस में भी छोटे स्कूल के बच्चे आए जो अपने प्लेयर्स को, अपने लोकल हीरोज को देखें खेलते हुए और इंस्पायर हो कि एक दिन वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सके।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र होल्ड पर रखे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव पर्चे में त्रुटियों की शिकायत, नाथवानी का नामांकन होल्ड पर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड। प्रभात खबर ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, सरकार दुष्कर्म की घटनाओं से जन्मे बच्चों को दिलाए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। दैनिक जागरण लिखता है, आज से 444 बालू घाटों से उठाव पर रोक, निर्माण कार्यों पर संकट। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंदाडीह खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति। आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के JSES स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड T20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है मॉर्निंग मेलोडी। मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की आरंभ में लीजिए सुनिए आदमी खिलौना है फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं अलका याग्निक और साथी की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
2: एक ट्रेड में सिक्स
3: ए अक्का
4: प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर
2: मतलब नुकसान की हर ट्रेड। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को लिखा योगेश ने, संगीत है प्रवीण कुंवर का।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को यह दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काग की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

एक पहेली लीला ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान ली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी ज्योतिषी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मारा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूँ।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरिम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमॉस्फेयर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साय में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने। कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह, क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था जी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा अशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा अशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों, है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
5: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रका की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
0: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
1: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्रराव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूं। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजर कर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूं।
0: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
1: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता आप्टे के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
6: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
7: जूता खराब कर दिया, साफ करो।
6: मेरी बेटी कहाँ?
7: बेटे कौन सा बेटे?
6: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
7: हमें कुछ याद नहीं।
6: याद करो, प्लीज याद करो।
7: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
6: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
7: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में।
6: मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहां है।
7: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने के लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
6: मुझे एक दफा उससे मिल ले दो प्लीज।

लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायत ही नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतबल ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजर ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: देहाती हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
3: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी तो ला, नहाओ के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
3: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
3: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
3: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: आग में तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफ़े नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब
3: है? अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन

0: लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
1: और दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
0: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
1: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
0: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
1: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
2: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
3: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्ग बार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
4: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष है, वो बुलंदी है, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए।
2: मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिर कर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
3: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

0: खास महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जो है, कैसे हैं श्रोताओं, सब ठीक है ना? चलिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं, इंसान की सफलता उसके हाथों

श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में गीत तो सुनेंगे ही, फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी की बातें करते हैं। देखिए, डिजिटल सुरक्षा और साइबर जागरूकता, इस विषय पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। डिजिटल सुरक्षा और साइबर जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट का सुरक्षित तरीके से उपयोग करना, खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना है। आगे भी हम बातचीत करेंगे, फिलहाल हम मिलकर सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

श्रोताओं, मजबूत पासवर्ड का उपयोग अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए कठिन पासवर्ड, अक्षरों, संख्याओं और विशेष चिन्हों का मिश्रण बनाए सभी जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल न करें। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिशिंग से बचाओ, किसी भी अचानक लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई संदिग्ध अटैचमेंट डाउनलोड करें। बैंक या सरकारी अधिकारी कभी भी आपसे फोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते। आप हमेशा सतर्क रहें और सजग रहें, क्योंकि यदि सतर्क नहीं रहेंगे तो आप आसानी से ठगे जा सकते हैं। और भी बातचीत हम करेंगे इस विषय पे। फिलहाल सुनते हैं आपके साथ मिलकर ये गाना।

श्रोताओं, गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के मौसम के बारे में कुछ जानकारी। हजारीबाग झारखंड में 10 जून को दिन भर मौसम मुख्यतः गर्म और शुष्क रहेगा।

लेकिन शाम या रात तक हल्के बादल छाने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने पद्मा सीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोस्टर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति जांची। पद्मा और पंचाडी अस्पताल में ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों की उपस्थिति पंजी की जांच की। प्रभारी डॉक्टर धीरज कुमार को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की जानकारी ली। इसी के साथ अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे मिलेंगे जानकारी के साथ। फिलहाल सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

श्रोताओं, चलते चलते बस हम यही कहेंगे कि हमेशा आगे बढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए रानी को, और चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं ये गाना।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 10:59:07 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए। लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को, डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अविनाश कुमार अभिषेक शुक्ला की आवाजों में अभी आपने सुना, इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म का नाम सात खून माफ। उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।
2: आंखों से आंखें चार करने दो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन

ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने। देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना। सुरेश वाडकर की आवाज में इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमा।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर। मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत।

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

एक था दिल एक थी धड़कन, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और आनंद राज आनंद और सुरेंद्र सोढ़ी का संगीत।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गईं। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहां आई किस लिए हैं, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो, तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है, तो चलोगी ना? मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत है उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम।

0: तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्य।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस, दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई मिल रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्ण काल बताया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस कार्यकाल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक कहा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और अंत्योदय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: देश के अंदर उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम सब काफी प्रयास किए यहाँ से लेके दिल्ली तक, और सरकार भी जाता भी था और यहाँ और नए माइंस का भी सर्वे करके गया है। कुछ स्कूल प्रयास है सारी करके उसको
1: इधर हजारीबाग में सेवानिवृत्त सैन्य जवानों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय सेना का मनोबल और मान सम्मान काफी बढ़ा है। उन्होंने आधुनिक हथियारों की उपलब्धता और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बेहद गर्व की बात बताया।
3: 12 साल मोदी जी का सेना के लिए तो बहुत लाभदायक है, और उसके आने के पहले सेना में सब कुछ रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, पर 2014 के बाद सेना में बदलाव भी हुआ और हर फौजी का आत्मविश्वास बढ़ा।
4: काम तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है डिफेंस में। आने वाले समय से बदलाव जिस तरह चाहिए उस तरह हो रहा है, और मोदी जी आने के बाद जो भी हुआ सेना के लिए अच्छा विकास हुआ है। इक्विपमेंट्स, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और जितने गन डिफेंस सर्विसेज में चाहिए थे वो मिल रहे हैं।
1: इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया और उन्हें इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी। झारखंड विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।
5: एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और 100% सेफ, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण, जबकि 3:30 बजे तक आज समय है इंक्वायरी करने का, बताने का, आपने एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ पांच पांच शहरी है, भाजपा का समित पद कैंडिडेट है, इसलिए आपने उनका नामांकन रद्द नहीं किया, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे।
1: दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा गेट के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नियमों के प्रतिकूल बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
6: भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गेट बंद, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और राज का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए स्थान भी सरकार ने तय किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस के प्रोटेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दल के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए।
1: राजधानी रांची में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोराबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश के तहत आज से नदियों से बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह रोक लग गई है। यह प्रतिबंध आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में मॉनसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 444 बालू घाट बंद रहेंगे और बालू के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित पीर टांड प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत बंजर जमीन पर आम बागवानी कर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। योजना से लाभान्वित किसान शेखर महतो और तूप लाल बेसरा ने बताया कि सरकार की मदद से वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
7: बंजर भूमि था जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए और बागवानी मेरा इतना शानदार रहा कि ये चौथा साल है बागवानी का। अगला साल ही लगभग हम 1 लाख का आम बेच चुके थे और इस साल भी एकदम खेती जो उम्मीद से बढ़िया हुआ है। पेड़ से ही पका हुआ आम को मिल जा रहा है बहुत लोगों को।
8: आम बागवानी मिला नरेगा तब से, तब हमने लगाए हैं। पूरे प्रखंड का सब आ करके देख रहा है, पूरा प्रखंड में लगा रहा है। इन साल कुछ मौसम के चलते से फल नहीं आया, फिर भी मेरा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए।
1: पंचायत सचिव सरफराज अहमद ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को उचित बाजार उपलब्ध करा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में कल देर रात बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारात सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से लौट रही थी, तभी मालीपाड़ा ढलान के निकट यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 597 अंक चढ़कर 74,516 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 157 अंक बढ़कर 23,400 पर पहुंच गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों के लिए मॉनसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की दो बेटियों का जिला मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम की सदस्य संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है।
9: मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था जिसमें हम लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन सेमीफाइनल में शूट आउट में लूज हो गए। कोशिश किए थे कि फर्स्ट क्वार्टर में ही गोल मारने का, पर नहीं हो पाया। और थर्ड प्लेस के लिए खेले कोरिया के साथ। हम लोग सीखे कि इंटरनेशनल में हम लोग अपना प्रेशर झेल सके।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जरा पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: अजी देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी और तुमसे?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो,
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: muskerij.
1: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए,
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए ना।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है, जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है, बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्मपत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: मैं
1: हाँ तुम
2: बस तुम
1: ओफो।
3: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
4: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

कचले कच्चे चाचा।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता

हो उतना ही बनाए, भोजन को फेंकने से बचे, ईंधन का उपयोग सोच समझकर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझे, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
5: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
7: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
7: अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
8: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि

0: एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जवलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
3: बहुबेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों का श्री मोदी के नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सम्मान प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। मंत्रियों ने मेज थपथपाकर और तालियां बजाकर देश सेवा की इस अभूतपूर्व यात्रा की सराहना की। केंद्रीय मंत्री

0: श्री वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्षों से देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय उठता था नक्सलवाद। आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रप्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। परिमल नाथवाणी के राज्यसभा नामांकन पर संशय बरकरार है। इंडी गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन जांच के बाद कल जहां वैध पाया गया, वहीं श्री नाथवाणी के नामांकन पर आपत्तियों की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने परिमल नाथवाणी प्रकरण पर आज विधानसभा में प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी विधानसभा के पास पहुंचे और तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया है वह अमर्यादित तथा नियमों के विरुद्ध है, जिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया बाधित करना चाहती है।
2: आज इस प्रकार के आंदोलन को करके संवैधानिक कानून बाधा डालने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का प्रयास किया है, तुरंत एफआईआर करके उनको जेल भिजवाने का काम करें।
0: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोरहाबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। इस दौरान आंदोलनकारी ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। मोर्चा के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आस आ रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है।
0: हाँ।
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल।
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाए, वो बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है,
0: है ना? हाँ।
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ, ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल।

0: तो नेहा, मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं। इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर हाँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र है या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वे मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी, तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है, मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी, ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सके।
0: सके,
1: और जब भी
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां, और साड़ी में
0: साड़ियां
1: जो स्त्री का सौंदर्य है ना, और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है, तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कारी के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है। जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार, जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है, तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है। यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी
0: ओहो
1: साड़ियां
0: क्या बात है, क्या
1: हैं। मुझे
0: बात है।
1: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ न मिलना, ऐसे कई कारण है।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली, और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारे दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत अच्छी बात
1: है। पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोल के अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणी अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है, उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए,
1: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
0: सुनते हैं।

घटित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो घर
1: चाहिए।
0: की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ।
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है
0: जी
1: सोनाली जी। सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं, इसलिए ऐसी।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी। क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डाला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं, जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये तो
0: दोस्त सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में 4 लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए, बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग 4, खाने के नखरे 1000, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले
1: हाँ
0: हैं।
1: सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को, कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे, तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है, रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय

0: मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए

0: परवल को अलग निकाल लें। बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भूनें जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत
0: चाहिए।
1: टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले। 5 फोड़न का तड़का दे। बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे। थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें?
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: नहीं है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक

0: पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई,
1: रेडियो की तरफ
0: और
1: बोल रहे हो।
0: दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही।
0: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
0: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
0: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
0: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए ये कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
0: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
0: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
0: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
0: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब,
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
0: तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
1: जी जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा,
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार

0: कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान।
1: जी,
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3 पेज
0: की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर जी
0: और के पास। हाँ, उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैं
1: लिख डाला।
0: सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई। तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूँ, तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी, तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है, बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा, ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक है, एक जाने माने प्रखर पत्रकार है, कवि है और लेखक है। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया, खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयंक कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
0: हो। जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं, फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 से लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है। प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे

0: इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी, जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुना,
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी यार, जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या बीएससी पार्ट 1 में रहा होगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी, आप अगर सुनाए हमारे,
0: हाँ,
1: तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साये में धूप उनकी
1: साये में धूप
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी,
1: तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी, तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सब को पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या
1: नाटक
0: कहानी है?
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चले एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो वो

0: पहले सो कुंडा खोलें
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
1: जी
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है,
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे

उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब?
0: मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर

0: घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा,
0: और इडुक्की के बाद इसमें नीरियामंगलम के पास इडामलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है। और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह। और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं

0: जो प्यारियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

0: पिथा एफ एम 110.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं की सराहना की। साथ ही देश की आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कामना की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकास करना भी है। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि 2 दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहित चौहान और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है आशाएं।

0: और अब आइए सुनते हैं नीति मोहन और जुबिन नौटियाल की आवाजों में फिल्म बादशाहों का गीत।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रिपोर्ट।

अंकित तिवारी की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म एयरलिफ्ट का गीत। इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में फिल्म आशिकी 2 का गीत।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी पराग की आवाजों में फिल्म बाटला हाउस का गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले इन सभी ग्रामीण भाई बहन के नसीम कदीने से आदाब जोहार और नमस्कार। किसान भाई बहन, आज हम अपन कार्यक्रम खेती बाड़ी में हर रोज की तरह नया नया कार्यक्रम लेकर आए लिए, जेकर में आज बात करबे कि प्राकृतिक खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे लेवल जा सको है। साथ ही साथ जरूर संदेश और गीत संगीत के भी आनंद लबे हमिन। और आज भेंट वार्ता में मक्का और फूलगोभी की खेती कैसे करल जा है, एकर पर भी हमिन जो है किसान के बातचीत सुनवेबे। और आखिर में बात करबे कि विकसित भारत में ग्रामीण विकास की का भूमिका है। तो सबसे पहले बात करो ये कि प्राकृतिक खेती में कम लागत से अधिक मुनाफा के बारे में। प्राकृतिक खेती एक ऐसा खेती है जेकर में रासायनिक खाद, कीटनाशक और जे बाहर से इनपुट हो है ओकर कम या बिल्कुल उपयोग ना करल जाए। एकर में खेत और पशु से मिले वाले प्राकृतिक जे साधन वो है ओकर उपयोग जो है करल जाए, जैसे कि देशी गाय आधारित खेती, गोबर और गौमूत्र के उपयोग करके जो है हमें अपन जो है प्राकृतिक खेती के बढ़ावा हमें दे सको ये। जीवामृत, मिट्टी में सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ावे खातिर जो है हमें एकरा इस्तेमाल करो ये। और बीजामृत, बीज उपचार के लिए। तो अगर हमें बीजामृत के, जीवामृत के अगर हमें इस्तेमाल करो ये, तो देखा कि हम इनके जो प्राकृतिक खेती है ओकर से जो उत्पादन हुआ है वो ओकर से बढ़े की संभावना अधिक हो जाए। साथ ही साथ देखा कि प्राकृतिक खेती की जो ओकर में मिट्टी की अम्लता भी बनल रहो है और फसल की जो पौष्टिकता है वो बनल रहो है। और हम इनके नेचुरल जो फार्मिंग हुआ है, प्राकृतिक खेती जो है हमें अपना सको ये। एकर में एक मल्चिंग विधि भी है, मल्चिंग के ढाइपे के नामी बनाए रखे खातिर। और एक है कि वापसा, मिट्टी में हवा और पानी के जो संतुलन है ओकर बनाए रखे खातिर भी हम इन प्राकृतिक खेती के इस्तेमाल करो ये। देखा कि मिट्टी में जो नमी है और हवा जो है ये दोनों में जो है संतुलन जरूरी हो जाए। अगर हवा ज्यादा है या नमी कम है तो भी क्या है कि जो प्राकृतिक खेती है ओकर में कुछ कमी आ जाए और जो हमें के फायदा होवे चाहिए वो ओकर से कम हुआ है। अब बात करो ये कि कम लागत कैसे होवो है ये खेती में जो है, समझे कि कम लागत जो कैसे लगो है, कम पैसा कैसे लगो एकर में। तो एकर में ये कि एकर से खेती के लागत घटो है और माटी की जो उर्वरता है वो बढ़ो है, फसल की गुणवत्ता बढ़िया होवो है और प्राकृतिक उत्पाद के जो मूल्य है कई जगह पर ज्यादा मिलो है। जीवामृत बनावे की विधि, अब जो हमें इस्तेमाल करो ये जीवामृत हो गए या फिर बीजामृत हो गए, तो एकर बनावे की जो विधि का है यहो हमें जान लीजिए ग्रामीण भाई बहन, ताकि हमें अपन आसानी से जो है हमें के पास संसाधन होते हुए भी कभी कभी हमें ओकर इस्तेमाल जो है उपयोग जो है न करो पारोहिये, जेकर की वजह से हमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो जाए, बेकार हो जाए। तो ओकर लिए सबसे बड़ा पहली बात तो ये है कि 10 किलोग्राम देशी गाय के गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़ और 2 किलोग्राम बेसन और या फिर जो है दाल के आटा, तनी सुन अस्थाई मिट्टी और 200 मिलीलीटर पानी, इस सब के जो है मिलाकर 48 घंटा तक छाया में रख के दिन में कम से कम 2 से 3 बार ओकरा हिलावे के चाहिए, यानी हिलाते रहना चाहिए ओकरा, ताकि जो भी मिक्सर है वो सब जो है पानी में घुल मिल जाए। एकर फायदा ये हुआ है कि एकर से फायदा ये हुआ है कि माटी के सेहत में सुधार हुआ है पर्यावरण सुरक्षित रहो है और किसान के आय जो है एकर से बढ़ो है। एकर में देखा कि भाई ये जहाँ ये सब जो है कर फायदा है होमा थोड़ा सा कुछ चुनौती के भी सामना हम इनके किसान भाई बहन के करो पड़ते और वो चुनौती ये है कि शुरू शुरू में जो है उत्पादन वो है तनी कम हो सको है, सही प्रशिक्षण और तनी बर्दाश्त करे की भी जरूरत हो वो है। तो ये हो गया प्राकृतिक खेती कम लागत में बढ़िया फायदा जो है कैसे किसान भाई बहन ले सको थी। अब एक बाद हमें कुछ जरूरी संदेश सुनोइए और फिर गीत नाथ भी हमें सुनबे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हमें गीतनाद भी सुन लिया और जरूरी संदेश भी सुन लिया। अब हमें किसान भाई बहन के एक जानकारी सुनावो ही है, बातचीत सुनावो ही है, किसान से लेवल बातचीत है। और वो बात है कि मक्का की खेती और फूल गोभी की खेती जो है कैसे करी जाए, एक पर भी हम किसान भाई बहन के सुनावे, ताकि जो किसान हथियन अनुभव जो है किसान जान हथियन कि किसान जो है कैसे खेती करो थी मक्का के और फूल गोभी के, तो सुना जाए बातचीत।
1: आज हम बड़का चुंबा आए हुए हैं और हमारे सामने जो है रामचंद्र प्रसाद मौजूद हैं, एक वरिष्ठ किसान है और इस क्षेत्र में इनको जो है काफ़ी शोहरत हासिल है खेती बाड़ी के क्षेत्र में। दूर दूर से लोग इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं खेती बाड़ी के मामले में। आज हम इनसे जानेंगे कि मक्का और फूल गोभी की खेती जो है वो कैसे करते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में इन्होंने जो है मक्का और गोभी की खेती जो है वो लगा रखी है। इससे पहले भी गोभी ये अपने खेत से जो है निकाल चुके हैं और फिर इन्होंने जो है गोभी की फसल लगाई है, साथ ही साथ मक्का की फसल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो लहरा रही है। तो रामचंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है?
2: शिक्षा तो मैट्रिक फेल है।
1: मैट्रिक फेल है, उसके बाद आपने क्या किया?
2: क्या किया, जैसे मैट्रिक फेल कर गए तो थोड़ा सा होता है, एक बार मनोबल टूट जाने के बाद वही फिर खेती बाड़ी में लग गए।
1: यानी पढ़ाई से आप रूठ गए, फिर आप जो है खेती बाड़ी की तरफ आप आ गए।
2: जी,
1: किसी ने कहा खेती बाड़ी की तरफ आने?
2: नहीं, बाप का बहुत जमीन है उसमें खेती बाड़ी।
1: पिताजी ने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेती की तरफ।
2: जी जी,
1: चलिए, बहुत अच्छी सोच है भाई, अपनी जमीन है, अपना सब कुछ है, तो खेती की तरफ आना आपका बिल्कुल सही फैसला सही था। हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं विभिन्न फसलों को लगाने के?
2: खेत का तैयारी वही है, जुताई करके, आजकल रोटर हर हो गया, उसके बाद बैल है, जैसा सुविधा हो खेत का जुताई करके, उसके बाद वही गोबर उसमें पाट दिया जाता है।
1: अच्छा, सिंचाई, ये आप जो खेती करते हैं कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है, वो हल बैल से खेती करना या ट्रैक्टर? और
2: नहीं तो हल बैल से तो हो गया कि अब सुविधा नहीं हो पाता है, और रोटर से हो गया कि खेत तुरंत तैयार हो जाता है, इधर बीड़ा में बीजा तैयार हो गया रोपने लायक, उसके बाद आराम से रोटर से जुता के अब तुरंत तैयार हो गया। हल बैल से तो अब सुविधा नहीं हो पाता है।
1: हल बैल से काफी समय भी लगता है।
2: हाँ, समय थोड़ा मोड़ा अब नहीं है कि हल बैल से किया जाए सब।
1: तो आप मक्का और गोभी की खेती के, पहले हम मक्का की बात करते हैं, तो मक्का की तैयारी जो है कैसे करते हैं?
2: मक्का का खेती का बहुत आसान तरीका है कि अभी तो बरसात का समय में उसका बुआई भी कर सकते हैं, मतलब हल से पीछे पीछे बुआई, लेकिन वैसा तो अब करने से पानी का तो देख रहे हैं वैसा स्थिति कभी पड़े नहीं पड़े, इसके अच्छे हमें खेत तैयार करके उसमें झोरा घींच कर उसके बाद आराम से हाथ से रुपाई कर दीजिए उसका।
1: अच्छा,
2: तो उसमें ठीक रहता है वो।
1: एक दाना से दूसरे दाना की दूरी क्या होती है
2: मक्का में? तो जैसे आज का हाइब्रिड मक्का आ गया है, उसका तो दूरी थोड़ा सा लगाने में वही 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक में दूरी में लगाने में, बीज का दूरी में, कि मतलब एक पौधा में दो मतलब आता है उसमें बाल।
1: अच्छा,
2: दो मक्का आराम से, बड़ा बड़ा मक्का
1: एक पौधे में दो मक्का। हाँ, जो है वो आराम से आता है। तो एक पौधा से जो है दूसरे पौधे की दूरी लगभग जो है 4-5 सेंटीमीटर?
2: नहीं उतना नहीं,
1: 2 से 3 सेंटीमीटर,
2: 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 तो कम से कम होना चाहिए।
1: और कतार से कतार की दूरी कितनी?
2: कतार का कतार मान लीजिए वही 1 फीट।
1: 1 फीट।
2: हाँ,
1: कितने दिनों के बाद जो है जर्मिनेशन आता है
2: मक्का? तो वही मतलब 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है मक्का का, सिंचाई करने के बाद, रोपाई करने
1: के बाद। तो मक्का रोपने के कितने दिनों के बाद सिंचाई करते हैं?
2: वही मक्का रोप के तुरंत सिंचाई कर सकते हैं।
1: अच्छा। हाँ। अच्छा, सिंचाई की क्या होते है? समय क्या होता है, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है?
2: वैसे तो सिंचाई का समय तो शाम को अच्छा रहता है, सिंचाई करने से, शाम को सिंचाई करने से पूरा जमीन में नमी आ जाता है रात भर में,
1: पौधा सूखता है।
2: हाँ, और जैसे सुबह करने से दिन भर धूप होने से शाम तक तो सूख जाता है, उसमें बीज का जैसे सही मतलब जो बीज दाना है वो बढ़िया से अगर अंकुरण होना है तो उसको फूलना चाहिए पानी में, तो रात शाम को सिंचाई करने से बढ़िया है।
1: अच्छा, कौन सा बीज आपने प्रयोग किया है?
2: मक्का का बीज तो हर कंपनी का है, लेकिन सबसे बढ़िया है वो पायनियर का आता है मक्का, सबसे बेस्ट है वो।
1: अच्छा, वो देसी मक्का आप क्यों नहीं लगाते हैं?
2: देसी मक्का अब लगाने से फायदा नहीं है, देसी मक्का में तो सब बाल भी छोटा आता है, दाना भी सही, और हाइब्रिड में हो गया कि बाल भी बड़ा आता है, दाना भी बड़ा बड़ा रहता है।
1: लेकिन खाने में तो देसी ठीक?
2: नहीं नहीं नहीं, मेहनत पर है, जैसा कीजिए।
1: नहीं, खाने में तो देसी ठीक लगता है?
2: देसी ठीक लगता है, लेकिन अब सबको भला है हाइब्रिड में।
1: इसका खरपतवार कैसे निकलते हैं?
2: खरपतवार नहीं, मक्का रुपाई करने के बाद उसको जर्मिनेशन हुआ, कुछ बड़ा हुआ, करीब करीब 10-12 दिन उसको खुदाई करके और फिर से मिट्टी चढ़ा के उसके बाद पानी पड़ा तो ठीक है, ऊपर प्रसाद का आना तो सिंचाई कीजिए।
1: कितनी बार मिट्टी चढ़ाते हैं?
2: मिट्टी एक बार।
1: मिट्टी एक बार?
2: एक बार।
1: कितने दिनों में जो है वो फूल आना, फल जो है शुरू हो जाता है?
2: मक्का तो वही अगर बढ़िया से सिंचाई हुआ तो हम तो

0: मतलब एक दिन पटवन कर, 2 दिन के बाद तो पटवन करना है, उसमें सिंचाई करना है।
1: अच्छा, वो
0: मौसम के अनुसार सिंचाई का भाव
1: जब दाना भरने लगता है उसके बाद से और फसल तैयार होने तक जो है कितना बार सिंचाई होनी चाहिए?
0: तो अगर सही अवस्था रह गया, गर्मी थोड़ा सा मीडियम रहा तो उसमें हमारा लगता है कि वही कम से कम 15 से 20 बार टाइम होगा सिंचाई करना उसमें,
1: यानी फसल जो
0: तैयार होने तक।
1: हाँ, तैयार होने तक। कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें लगती हैं?
0: बीमारी मकई में वही कीड़ा लग जाता है गाभा में।
1: अच्छा।
0: इसका रोपाय में तो इसका सही सब उपचार है, सही है वो कोराजिन करके दवा आता है डुपोंट कंपनी का।
1: अच्छा।
0: सिंचाई मतलब रोपाई कर दिए उसके बाद जेमिनेशन हो गया, 10 से 15 दिन के अंदर में कोराजिन दवा का एक बार छिड़काव, मतलब पौधा से लेकर थोड़ा सा जमीन में भी छिड़काव होना चाहिए और दवा उसका छिड़काव नहीं करना है। उसके कोराजिन दवा ऐसा है कि एक बार छिड़काव कर दिया ना तो कीड़ा तो मारेगा ही और कीड़ा लगेगा नहीं, उपजाऊ में भी वृद्धि करता है, पौधा भी तंदुरुस्त और बाल भी लंबा लंबा आएगा, दाना भी ढंग का रहेगा।
1: अच्छा, ये कैसे पता लगाएंगे कि जो है हमारे पौधे में जो है कीड़ा लग रहा है?
0: वो अपने साफ पता लग जाता है कि ऊपर में जो गाभा रहता है कीड़ा लगने के बाद वो सूखने लगता है धीरे धीरे।
1: अच्छा, पत्ता जो है वो
0: छेदा करता है, वो अपने ऊपर देखेगा गाभा उसका सुकुड़ने लगता है।
1: अच्छा, मक्का की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है?
0: मक्का का फसल वही 50 से 60 दिन।
1: आप इतने बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो बाजार में ले जाने की क्या व्यवस्था है आपके पास?
0: बाजार का वही सुविधा है, टेम्पो है, सब है। और बाजार में आजकल जान रहे हैं कि मक्का हो गया कि सालों भर का उगाने से उसका बिक्री बढ़िया है, कहीं भी कोई बाजार में ले जाइए।
1: ये अब हम बात करते हैं गोभी की।
0: जी,
1: गोभी इससे पहले भी आप जैसे कि बात बात में आपने कहा कि भाई गोभी फसल भी हम लगाए हुए हैं और इससे पहले गोभी हम ले भी चुके हैं। अभी आप जो गोभी लगाए हैं कितने दिनों पहले लगाए हैं?
0: गोभी तो हम लोग लगाए हैं, सालों भर लगाते हैं। उसमें आजकल हाइब्रिड गोभी निकल के सबसे सुविधा हो गया कि आप जब चाहिए लगा सकते हैं उसका, सालों भर हर मौसम में मतलब उपयुक्त है फूल गोभी।
1: अच्छा, अभी जैसा कि मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि भाई अच्छा पैसा जो है मार्केट दे रहा है।
0: हाँ।
1: क्या आपका कहना है?
0: हाँ, अभी ये देखिए गर्मी का फूल हाइब्रिड का, जैसे नोबेल का हो गया हैप्पी, उसके बाद है वही साइजेंटा कंपनी का 60-99। अगर पानी आपके पास अगर पूरा उपलब्ध है तो उसमें किसान फूलगोभी का खेती कर सकता है और बहुत बढ़िया आमदनी उसमें है, पानी का सुविधा है उसके लिए किसान।
1: पिछले 2-3 महीनों में जो है आपका बाजार जो है वो कैसा रहा?
0: कैसा? बहुत बढ़िया, इस साल के अपेक्षा में बहुत बढ़िया रहा फूलगोभी का भाव। अभी तो हम बता रहे हैं करीब करीब 1 से 2 महीना होने चला, अभी करीब करीब 40 रुपये से ऊपर पर किलो
1: बेचे।
0: इसमें
1: कौन कौन सी बीमारी लगती है?
0: इसमें देखिए, इसमें तो फूलगोभी बहुत नाजुक चीज है, उसमें आपको बिजड़ा तैयार करने से, फूलगोभी तैयार करने में वो आपको कीटनाशक दवा का यूज बहुत जरूरी है करना, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें थोड़ा सा भी कीड़ा लग गया तो बर्बाद कर देगा फूलगोभी। इसमें बहुत मेहनत है कि दवा का छिड़काव आपको समय के अंतराल में, हर समय के अंदर वही मतलब 5 दिन 6 दिन समय को देखते हुए मौसम जैसा करे उसके अनुसार से आपका दवा का छिड़काव तो एकदम नॉर्मल करना है, यार अगर किसान चूक गया तो फसल बर्बाद हो जाएगा।
1: यानी सुबह शाम जो है आपको खेत में आकर
0: उसमें ध्यान देना होगा आपको। फूलगोभी का खेती ऐसा है कि किसान कितना मेहनत करे अगर दवा में चूक हो गया तो समझिए फसल बर्बाद।
1: कितने क्षेत्र में जो है मक्का और कितने एरिया में जो है आपने फूलगोभी लगाया?
0: मक्का का खेती तो मान लीजिए मतलब लाट बाय लाट लगा हुआ है, लेकिन मक्का खेती तो मान लीजिए 50 डिसमिल और फूलगोभी तो लाट वाला बहुत ज्यादा लगा हुआ है।
1: अच्छा, तो व्यापारी आता है लेने के लिए या आप लोग आसपास?
0: नहीं, जैसा सुविधा अगर व्यापारी को बुलाइएगा तो घर आ जाता है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा भाव चाहिए अधिक तो मार्केट ले जाना
1: पड़ता है। तो बारिश शुरू हो रही है, आगे जो है क्या प्लान है आपके आपके खेती बाड़ी का?
0: प्लान तो देखिए खेती बाड़ी का प्लान जब खेती बाड़ी पर आश्रित है तो प्लान अपने से बनाना होगा, किसी के भरोसे तो रहना नहीं है। इसके लिए मैं अगर पानी का थोड़ा सा ऐसा तो है, देर पड़ रहा है देर से, इसके लिए सुविधा सिंचाई का करना होगा।
1: और आखिर में हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: सलाह देना चाहते हैं कि मेहनत कीजिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल थोड़ा सा लेट है लेकिन मीठा होता है, इसके लिए मैं मेहनत कीजिए और खुशहाल रहिए और दूसरों को खुशहाल रखिए।
1: ये थे रामचंद्र प्रसाद जी, जो हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत अच्छी सारी

0: अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। हमें उम्मीद है कि किसान भाइयों को ये बातचीत पसंद आई होगी। तो रामचंद्र जी, आपने हमारे जो है किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मक्का और फूलगोभी की उन्नत खेती कैसे करल जाए, एकर पर हमें बातचीत सुनो लिए रामचंद्र प्रसाद से, और जो जानकारी ले रहे थे हमने से वो थे नसीम अहमद। तो हमारा उम्मीद है कि हम इनके ये बातचीत जो है मक्का की खेती हम इनके श्रोता के हम इनके किसान भाई बहन के पसंद आल होते, और जो तरह खेती कर रहे थे वो तरह खेती करे के कोशिश करते थे। तो अब अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ावो ही, और चलो ये सुनो ही एक जानकारी कि विकसित भारत में जो है विकसित भारत में गांव के जो है विकास में का भागीदारी है, एक पर बातचीत हम इन करवे। और बात यह है कि गांव की तरक्की भारत के तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभावो है। जैसन कि हमें जाना ही है कि भारत की एक बड़ी आबादी जो है गांव में रहो है, अगर गांव तरक्की करते है तो देश की भी समग्र विकास जो है वो है, देश की भी तरक्की जो है वो तेजी से होते है। एकर लिए साथ साथ है कि एकर से रोजगार के अवसर जो है बहु है, कृषि पशुपालन कुटीर उद्योग और अन्य ग्रामीण व्यवस्था के बढ़ावा मिलो है, एकर से बेरोजगारी और गरीबी कम हो है, आधुनिक तकनीक सिंचाई और बेहतर बीज के उपयोग से उत्पादन बढ़ो है, किसान की आय में वृद्धि हुआ है, गांव की आमदनी में गांव के जो लोग होते हैं आदमी किसान भाई बहन तो उकन के जो जीवन स्तर में वो जो है सुधार हुआ है, आर्थिक स्थिति में मजबूती आवो है, गांव में स्कूल अस्पताल और दूसर सुविधा बेहतर हुआ है, साथ ही साथ ग्रामीण के जीवन ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ रहो है, और साथ ही साथ गांव में जो रोजगार है और दूसर सुविधा मिले से पलायन की समस्या जो है से छुटकारा मिलो है। देखा कि आज गांव की जो है सबसे बड़ी समस्या पलायन के है। अगर हम जो है अपन घर में कोई कुटीर उद्योग लगाइए या फिर वसन छोटा छोटा काम करिए या कोई तरीका अपनाइए जेकर में अपन घर में रह के अपन गांव में रह के जो है हम अगर अर्थव्यवस्था के मजबूत कर सको ये, तो देखा कि एक हम के गांव भी विकास विकसित होते और हम भी तरक्की करवे, और साथ ही साथ जब गांव जो है विकसित हुए है तो साथ साथ जो है समाज और देश भी जो है से विकसित हुए है। साथ ही साथ देखा कि जो पलायन की जो समस्या है आज के युवा पीढ़ी की जो है बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या जो है समझे कि हम के जो गांव के जो विकास हुए है ये विकास में जो है वो बाधा हुआ है कि जो युवा पीढ़ी है वो चल जाते हैं बाहर, और फिर जो गांव के जो खेती बाड़ी है या फिर कुटीर उद्योग जो लगना है ओकर में कोई तरह के सहयोग जो है वो ना हो पा रहा है। देखा कि देश के बदले में या देश की तरक्की में युवा पीढ़ी के जो है बहुत बड़ा हाथ हुआ है। तो एक से अगर हमें जो है भारत में गांव के विकास के बारे में अगर चर्चा करो ये, तो ये हम जानो ये कि देखा कि सबसे बड़ा देश जो हम के है भारत जो है, और ओकर में जो आबादी है सबसे ज्यादा आबादी जो है वो गांव में रहो है, तो गांव के जो है विकास होना जो है बहुत जरूरी हुआ है। साथ ही साथ गांव और शहर दोनों के बराबर विकास एकर से हुआ है। देखा कि भाई जो गांव के जो उत्पाद हुए है गांव के जो प्रगति हुए है ओकर असर जो है समझा कि शहर में पड़ो है, और जब शहर में पड़ो है तो फिर वो धीरे धीरे जो है जो विकास के जो रास्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ो है, और एक से हम के जो देश है वो मजबूत हुआ है। और आखिर में ये है कि क्षेत्रीय असमानता जो है वो कम हुआ है। तो एक बात तो ये है कि भाई जो किसान अपन उत्पादन करो थे खेती बाड़ी में तो वो अब ऑनलाइन भी अपन सामान के अपन उत्पाद के जो है बेच सको थे, और देखा कि वहाँ अपन बाजार जो है वो चुन सको थे कि कहाँ पे ओकरा जो है ज्यादा फायदा हो रहा है। हम अपन उत्पाद के अगर गांव में बेचो ही है तो बिचौलिया सब बीच में आके आधा मुनाफा किसान के ले लिया थे, और फिर जो किसान के फायदा मिले के चाहिए वो फायदा जो है वो नहीं मिलो है। तो एक

का चलते भी किसान के जो है नुकसान हुआ है। तो देखा कि भाई हमें जो है अपन गांव की तरक्की और गांव के विकास के बारे में अगर हमें के जो युवा पीढ़ी आथिन वो आगे आए थीन या छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगा के या छोटा छोटा बिजनेस करके जो है अपन व्यापार के भी मजबूत कर सको थीन और अपन खेती बाड़ी के भी अपन गाँव के भी जो है वो मजबूत कर सको थीन। तो यह जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से भी जाके समय हो गया, तो इसी यही सब जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से नसीम के इजाजत दा। नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से होगा। कृपया करें कुछ पल इंतजार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो, शिव पूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। दुमका जिले में युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी है। इसी के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर 113 अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया जिनमें 14 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रन से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। शाम के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम युवा साथियों को मासूम का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, आज के कार्यक्रम में भी हम हाजिर हैं कुछ जानकारी भरी बातों और कुछ सुरीले और मधुर गीतों के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फॉरेक्स ट्रेडिंग
2: अभी
3: एक ट्रेड में सिक्सर
4: ए अक्का
5: प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर
3: मतलब नुकसान की हर ट्रेड इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं ऑथराइज लिस्ट जांचें आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: युवा साथियों आज के कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे युवा और रक्तदान के संबंध में। निश्चित रूप से रक्तदान महादान का जो नारा है युवा साथियों ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। एक यूनिट खून 3 लोगों की जान बचा सकता है और ऐसे तो 18 से 65 वर्ष तक के स्वस्थ लोग रक्तदान कर सकते हैं मगर जब युवा इस मुहिम से जुड़ते हैं तो समाज वास्तव में स्वस्थ होता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हर साल देश को करीब 1.5 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है मगर उपलब्ध हो पाता है मात्र 1.1 करोड़ यूनिट। देश में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को खून की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में युवाओं के आगे आने से 40 लाख यूनिट रक्त की कमी पूरी हो सकती है। ऐसे भी युवा दोस्तों जो युवा है वो बेहतर रक्तदाता हो सकता है। कारण यह है कि युवा का हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, बीमारियां कम होती हैं और रिकवरी तेज होती हैं। युवा द्वारा एक बार रक्तदान करने से नया खून जल्द बन जाता है। वैसे भी रक्तदान करने के अनेक फायदे हैं। नियमित रक्तदान से हृदय रोग का खतरा 88% कम होता है। शरीर में आयरन का लेवल संतुलित रहता है। रक्तदान करने से कैलोरी बर्न होती है जिससे वजन नियंत्रित रहता है। रक्तदान से हर बार HIV, हेपेटाइटिस बी सी, सिफिलिन, मलेरिया आदि की जांच हो जाती है। यो दोस्तों अगर हम हजारीबाग की बात करें तो यहाँ के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज

अस्पताल के ब्लड बैंक के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर महीने 800 से 900 यूनिट खून की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया के 200 से अधिक बच्चे, डिलीवरी केस और सड़क हादसे के मरीजों को सबसे अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तो रक्तदान शिविर का आयोजन नियमित रूप से होता रहता है, मगर गर्मी और छुट्टियों के दिनों में ऐसे कैंपों में करीब 30% तक की कमी हो जाती है। ऐसे में विशेष रूप से युवाओं को आगे आना चाहिए और खुद से ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान करना चाहिए। युवा दोस्तों, अगर हम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात करें तो आज के स्टॉक में एबी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप का जो रक्त है वो बिल्कुल शून्य है। तो ऐसे में हम सबों को, विशेष रूप से युवाओं को चाहिए कि वो ब्लड बैंक पहुंचकर खुद से रक्तदान करें। वैसे भी विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ युवा 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है, यानी एक युवा साल में 4 लोगों की जान बचा सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा, तो ऐसे में युवाओं से गुजारिश है कि आप सब ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान अवश्य करें।

0: युवा साथियों, आप सब पठन पाठन के क्रम में अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी अपनाते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उससे युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में युवाओं का भविष्य विषय पर श्री सौरभ कुमार से ली गई भेंट वार्ता का पुनर्प्रसारण। भेंट करता है अशोक कुमार।
1: श्रोताओं, आज के युवाणी कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं हजारीबाग के केवी महिला महाविद्यालय बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप विभाग के इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कुमार। आइए जानते हैं वर्तमान समय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, और आज व्यावसायिक पाठ्यक्रम में बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप की पढ़ाई छात्राओं को किस तरह लाभ पहुंचा रही। तो सौरभ जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ नमस्कार।
2: धन्यवाद अशोक जी। पहले तो पाठ्यक्रम जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर वोकेशनल कोर्स, यहाँ पर केबी महाविद्यालय में 5 वोकेशनल कोर्स चलते हैं
1: जी,
2: ठीक है। फैशन डिजाइनिंग, CND, BMLT, BCA और BCS
1: जी।
2: तो BCS बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप यहाँ 2020 से शुरू हुआ
1: जी। खास तौर से BCS पर ही आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
2: जी।
1: जी, आगे बताइए।
2: तो बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप जो है
1: जी,
2: वो CA और CS के अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनके ऑफिस में जो काम करते हैं या लॉ फर्म्स में जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक एक पाठ्यक्रम है
1: जी।
2: ये पूरी तरह से उनके व्यवसाय से संबंधित चीजों में इसमें थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल भी पढ़ाई होती है, और समर ट्रेनिंग जो है वो भी, इंटर्नशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी किसी CA या CS के अंडर में ये लोग 45 डेज का काम करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से जो है ऑडिटिंग होती है और लॉ फर्म्स में किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग बोलते हैं
1: जी। सौरभ सर, अभी के समय में वोकेशनल कोर्सेज के काफी महत्व भी देखे गए हैं हर सेक्टर में, कहिए तो जैसे उपयोगिता है, महत्ता है। तो ये बता दिया कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जहाँ वोकेशनल कोर्सेज करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
2: वोकेशनल कोर्स करने का सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि जैसे वो आपको एक मेन सेक्टर के लिए तैयार करता है
1: जी,
2: ठीक है। जैसे फैशन डिजाइनिंग हो तो वो गारमेंट्स के लिए जो है उसके लिए तैयार करता है, BCA हो गया वो IT इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार करता है, उसी तरह से BCS है तो वो आपको ऑडिटिंग जो है कंपनी की, विभिन्न तरह की ऑडिटिंग होती है, ग्रीन ऑडिट जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल ऑडिट, पर्यावरण संबंधित ऑडिट जो होता है उसके लिए होता है, अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है
1: जी।
2: और लीगल तौर पर जैसे जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, वो सारी चीजें जो है उसमें स्टूडेंट्स को थ्योरी और बाकी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो वहां जाकर के उन जॉब्स को जो है वो परफॉर्म कर सकते।
1: अच्छा, ये बात बताइए सौरभ सर की कितनी पढ़ाई के बाद इस पे लोग दाखिला ले सकते हैं, कहां तक का?
2: इस 10+2
1: जेन 12 के बाद
2: जी।
1: तो 10+2 के बाद ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं?
2: हाँ, ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं ये छात्र।
1: अच्छा, अब ये बताइए कि बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप कोर्स जो है, इसके पाठ्यक्रम क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है इसमें छात्रों को?
2: इसमें हम लोग BCS में खास तौर पर हम लोग ऑडिटिंग से रिलेटेड अकाउंट्स पढ़ाते हैं
1: जी,
2: ठीक है। पर्यावरण संबंधित एनवायरमेंटल लॉज पढ़ाते हैं, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, जैसे आप जानते होंगे कि झारखंड में बहुत सारा कोल माइनिंग है, ठीक है
1: जी,
2: तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो हम लोग उससे संबंधित जो गवर्नमेंट के जो मानक हैं उनको कैसे आप फॉलो अप कर सकते हैं, उसके लिए एनवायरमेंटल ऑडिट होता है जिस, और फिर उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग, अगर कंपनी को रजिस्टर करना है, कंपनी के किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है उसके बारे में सिखाते हैं।
1: अच्छा, BCS का कोर्स यहाँ कही जाता है, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो
2: नॉर्थ
1: जी गौरव की बात है कि वुमेन्स कैवी वुमेन्स कॉलेज
2: जी
1: है, इसके सुविधा उपलब्ध है
2: जी।
1: ये कितना वक्त हो गया?
2: तो हम लोगों ने पहला बैच 2017 में स्टार्ट किया।
1: 2017 में आपने स्टार्ट किया
2: जी,
1: और कुछ उपलब्धि भी रही है कि उससे?
2: हाँ, अभी हमारी उपलब्धि, जैसे अभी हमारा जो पहला बैच जो अभी निकला है, उसमें से 10 जो बच्चे हैं वो प्लेस्ड आउट हैं। एक्चुअली हम लोग ले, जैसे इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, जिसमें हम लोग 25 सीट्स ही लेते हैं।
1: अच्छा जी
2: जी, तो 10 बच्चे जो हैं वो प्लेस्ड आउट हुए हैं यहाँ से, जिसमें से जो सबसे हाईएस्ट पैकेज हमारा जो गया है वो 8 लाख पर एनम का गया है बैंगलोर में बायजूस में।
1: अच्छा, BCS को कोर्स कराने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है भारत में, पूरे भारत देश की?
2: भारत में अगर बात करेंगे तो साउथ में ज्यादातर है,
1: ज्यादातर
2: साउथ, जैसे आपका SRM यूनिवर्सिटी है वो साउथ में है, उसके बाद लॉयला कॉलेज है वो है क्राइस्ट में, इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, उसमें इसकी पढ़ाई।
1: तो BCS के अलावा और यहाँ कॉलेज में, कभी हम इस कॉलेज की बात करें तो और कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं?
2: शुरू में ही बताया कि इसमें हमारे यहाँ लगभग हर तरह का वोकेशनल कोर्स कराया जाता है। इसकी इसका रीजन ये है कि जैसे बच्चियां जो है, हम लोग कोशिश यह करते हैं कि क्योंकि ये महिला विद्यालय है तो वुमेन संबंधित जो कोर्सेज हो उनको कराना ज्यादा बेटर है
1: जी जी।
2: जैसे कि जैसे आप यहाँ पर भी देखिएगा तो BCS पढ़ाई होती है, BBA पढ़ाई नहीं होती। रीजन ये है कि BBA में बच्चे क्या होते हैं, वो फील्ड वर्क करते हैं, यहाँ तो BCS में है कि आपको ऑफिस जॉब करना है, तो उस वजह से। फिर फैशन डिजाइनिंग भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जहाँ पर महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है
1: जी।
2: फिर उसके बाद CND आ जाता है, क्लिनिकल नाइट्रिशन एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ठीक है, उसमें भी है कि आपको हॉस्पिटल्स में काम करना है। तो जितने विषय जो वुमेन से संबंधित हैं वो सारे ही हम यहाँ पर वोकेशनल के तौर पर।
1: क्या सारे वोकेशनल कोर्सेज में प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है?
2: जी, हमारा एक पार्टनर
1: सेलेक्शन होता है,
2: दो चीजें हैं जी। पहला तो हमारा अपना एक प्लेसमेंट काउंसिल सेल है,
1: ठीक है,
2: उसके मैं और एक और BCA के जो इंचार्ज हैं वो दोनों मेंबर हैं, ठीक है। और एक हमने एक बाहर की कंपनी है HR में, उससे हम लोगों ने टाई अप करके रखा हुआ है, वो आती है यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए।
1: यानी कि प्लेसमेंट की व्यवस्था यहाँ पर छात्राओं को है और निस्संदेह रूप से लाभ भी लाभ होगा। वर्तमान में शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: वर्तमान में जैसा हम लोग अभी भी देख रहे हैं जो नई शिक्षा नीति है
1: जी,
2: वो ज्यादातर
1: ऑनलाइन पे अभी निर्भर है।
2: ऑनलाइन पर निर्भर तो है, वो तो कोरोना के कारण है
1: जी,
2: ठीक है, बट ज्यादातर जो अभी जो शिक्षा नीति है उसका फोकस भी जो है वो प्रोफेशनल कोर्स की ओर ज्यादा है
1: जी जी,
2: व्यवसायिक कार्यक्रम की ओर ज्यादा है, क्योंकि रोजगार संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको, उस पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा लोग जो है वो काम कर सके और ज्यादा लोग जो है वो कार्यरत हो सके।
1: और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस कोर्स में आना चाहिए? अच्छा, ये बताया जाए सौरभ सर की ये BCS का कोर्स जो है
2: जी,
1: कुल कितने वर्षों का होता है?
2: ये 3 वर्ष का होता है, उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, तो मास्टर्स अलग से साउथ में बहुत जरूरत होता है।
1: 3 वर्ष के कोर्स में आपके केंद्र से अगर कोई करता है कुल कितनी रकम खर्च होती है इसमें?
2: इसमें कुल 75,000 rupees टोटल फी
1: 3 वर्ष
2: जी,
1: तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है
2: जी,
1: क्योंकि स्थान लोकल में इस तरह की सुविधा दी जा रही है तो छात्र जो है जितने भी छात्राएं हैं इस कोर्स के करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकती है। जैसा कि आपने कहा कि 10+2 के बाद ही जो है सो एक करियर सुविधा जो है शुरू इसकी हो जाती है, ये बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि है हजारीबाग के लिए वुमेन्स कॉलेज में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि ये BCS का कोर्स, क्या प्राथमिकता आप लोग देते हैं कि जो इस कॉलेज के की बच्चियां हैं उसी को आप लोग लें?
2: नहीं, ऐसा
1: हजारीबाग के बाहर के भी इसमें आ सकते हैं या दूसरे कॉलेजेस के भी
2: हम लोग
1: इसमें आ सकते हैं, ये बताइए।
2: मैं आपको एक अपना अनुभव है वो बताना चाहूंगा। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस कोर्स को, प्रारंभ किया था, तो जो हमने ज्यादातर देखा कि जो ट्रेडिशनल पढ़ने वाले यहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कम आए। उसकी जगह पर जो सेंट जेवियर्स के बच्चे हैं, डीएवी के बच्चे हैं, वो ज्यादा आए
1: जी,
2: ठीक है।
1: अच्छा,
2: तो उनको देखते हुए फिर धीरे धीरे करके आज की डेट में हमारे पास यहाँ के बच्चे ज्यादा हैं और हमारे पास मुश्किल हो जाता है कि बाहर के बच्चों को हम ले पाएंगे।
1: लेकिन ये सुविधा है कि अगर कैपेबिलिटी है तो
2: कैपेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अच्छा है, तो हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग 25 सीट से ज्यादा जो है वो अलाउ नहीं करते। अगर कोई टीचर या जो बाकी लोगों से अगर आपको आपको फॉरवर्ड किया जाता है तो भी अलाउ।
1: अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आपने ये खर्च तो आपने बता दिया
2: जी,
1: ये खर्च है, उसके बाद जब जॉब लग जाती है तो ट्रेनिंग पीरियड होती होगी
2: जी।
1: पहले तो ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में भी बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है?
2: ट्रेनिंग
1: वो कितना ट्रेनिंग होता है?
2: ट्रेनिंग निर्भर करता है, जैसे बच्चे जो है वो परफॉर्म करते हैं,
1: ठीक है, ठीक है।
2: 3 साल में बच्चे परफॉर्म करते हैं, हमारे पास कंपनीज आती है जो इंटर्नशिप कराती है। अब इंटर्नशिप में कंपनी, जो भी कंपनी आएगी, एक कॉमन सा क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे को अच्छे बच्चे चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसको सबसे अच्छी वाली कंपनी में भेजते हैं। फिर धीरे धीरे करके वैसे वैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो जो अच्छी कंपनी है वो पे भी करती है स्टाइपेंड 1000 1500 ऐसे, मतलब जस्ट फॉर, बिकॉज वो बहुत दिन तो वहां पर नहीं ना, जस्ट फॉर लाइक 45 डेज का इंटर्नशिप, ठीक है। 45 डेज का इंटर्नशिप हो गया, 6 सेमेस्टर ये लोग पास आउट करते हैं, उसके बाद जो है वो कैंपस प्लेसमेंट जो है वो हमारा चालू होता है।
1: तो वो सैलरीज मोटा मोटी एक अनुमान बताए कि कितने शुरुआत होती है? जब
2: एक मोटा मोटी अगर अनुमान बताए तो हम लोगों का लास्ट टाइम का जो रहा वो 2.4 से स्टार्ट हुआ था। तनिष्क इज 2.4 जो पहली अगर लोएस्ट लो ले तो, और हाईएस्ट हमारा गया है 8 लाख का पैकेज गया है बाई जून, तो इसके इन बिटवीन रहता है किसी का 8 लाख का पैकेज।
1: तो बहुत ही बढ़िया है, आपने बताया सौरभ सर
2: जी, और क्योंकि वो हमारे बैच के एंजल में टॉपर भी थी, ठीक है,
1: सही
2: उसका चूंकि अब टॉपर है तो अच्छा प्लेसमेंट हो गई, ठीक
1: है। बायजूस उनको
2: जी बैंगलोर ऑफिस
1: जी जी। तो श्रोताओ, हमारे बीच थे सौरभ कुमार जी, जिनके माध्यम से आज हमने जाना कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज जो है, डेन प्लस टू के बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हैं, और खास तौर से हमने BCS के बारे में चर्चा की, और अच्छी चर्चा हमारे बीच हुई है, जिसे सुनने के बाद ये समझ में आता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वोकेशनल कोर्स, और इसमें छात्रों का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। तो आप अवश्य ही डेन प्लस टू के बाद इस और जैसे ध्यान दें, और चूँकि केवी कॉमर्स कॉलेज में BCS की पढ़ाई हो रही है, यहाँ से आपको प्लेसमेंट की भी सुविधा दी जाती है, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, और अपने करियर का निर्माण करें। सौरभ सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
0: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में युवाओं का भविष्य, निश्चित रूप से युवा साथियों, इस विषय पर आपने सुना श्री सौरभ कुमार से ली गई भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण। भेंटकर्ता थे अशोक कुमार। निश्चित रूप से इस भेंटवार्ता से आप काफी लाभान्वित होंगे, और अब हमारे युवाणी कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है, तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी का, ये हजारीबाग केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार शानू और सोनू निगम की आवाज में इस गीत से। फिल्म का नाम है अब लौट चलें।

और अब आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म आगाज का गीत।

अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म बलमा का गीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म चाहत का गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र, 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी, मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथवाणी का नामांकन वैध घोषित, नाम वापसी का कल आखिरी दिन, जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना, कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आयोजित जेपीएल के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और जन कल्याण के 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए। बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। आपने देखा, करीब करीब हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी को इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता पाई है।
6: मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 25 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जो गरीबों की चिंता करने का काम विगत 12 वर्षों से किया। जो व्यक्ति इलाज के अभाव में तरफ तरफ के काम में मर जाता था, जो भूखा व्यक्ति पेट में घर का बात करके पेट के बल 100 रुपए भूख मिटाता था, आज किसानों से पूछे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है।
4: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने दो दिनों तक चली जांच और आपत्तियों के बाद श्री नाथवानी के नामांकन को वैध मानते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इससे राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी कल तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग कड़े कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर जोर दे रही है।
7: यूरिया डीएपी जो है और फर्टिलाइजर्स जो है वो केंद्र सरकार से ही हम लोगों को अलॉटमेंट प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पर युद्ध चलने के कारण भी इन चीजों का निर्यात में कमी आया है। राज्य के किसानों को भी अपेक्षाएं हैं, केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप से इन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए 59,340 बूथ लेवल एजेंट BLA-2 की नियुक्ति की है। इधर झामुमो की ओर से बोकारो में BLA के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने एसआईआर से संबंधित जानकारी दी।
8: अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए पंचायत कर्मी बूथ कमेटी और BLA-2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे।
4: हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का आरा गांव आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कनेक्टिविटी से दूर है। गांव की मुखिया सुनीता देवी का कहना है कि 2 वर्ष पहले पुल निर्माण को लेकर निविदा हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की विफलता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुल और पक्की सड़क के लिए क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं।
9: पोखरिया से आरा जाने के लिए रास्ता बहुत ही खराब है, जिसमें लकड़ी का पुल बनाया गया है, उसी से आवागमन अभी हो रहा है। यहाँ पे टेंडर लगभग 2 साल पहले हो चुकी है, जो अभी तक कार्य स्टार्ट भी नहीं किया गया है। यह कार्य को तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जो अभी बहुत विलम्ब हो रहा है और वहाँ के जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है।
4: और अब मौसम का हाल।

दक्षिण पश्चिम मॉनसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मॉनसून के अगले 3-4 दिनों में राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस अवधि में कई जिलों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। लक्ष्य हासिल करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम 150 रन ही बना सकी। लीग का दूसरा मुकाबला रात 8 बजे से कोयलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा। अब से थोड़ी देर में JPL का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र। 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित परिमल नाथवानी का नामांकन वैध घोषित। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना। कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित JPL के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास जारी है। गिरिडीह के उप विकास आयुक्त अस्मिता कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,09,000 से अधिक लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है।
2: गिरिडीह जिला अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 1,09,410 आवास पूर्ण करा करके उन सभी लाभुकों को गृह प्रवेश करवा दिया गया है। शेष हमारे जिले में 18,150 आवास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसे निकट भविष्य में शीघ्र कराते हुए उनको भी गृह प्रवेश कराया जाएगा।
1: गिरिडीह शहर को महानगरीय सुविधा देने के लिए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कई योजनाओं की स्वीकृति दी है। नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी में अब शहर का नाली का गंदा पानी नहीं जाएगा, साथ ही उसरी नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनेगा।
3: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा जो था पूर्व में गिरिडीह नगर निगम को उसरी नदी संरक्षण और पर्यावरण का जो उसमें देख रहे होंगे स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान में हमारे मंत्री जी के यहाँ रहने से एक दिन उनका दिशा निर्देश था इसको स्वच्छ बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के लिए, तो उसको लेके हम लोगों ने एक DPR बनवाया एक एजेंसी के माध्यम से, और उसमें जैसे एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है हम लोग को दिया गया है STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे नदी का पानी जो शहर से नदी में पानी जो गंदा जा रहा था उसको हम लोग अब उसका एक तरह से कहिएगा कि STP जो ये निर्माण हो रहा है उसे शुद्ध कर सकें उस पानी को और नदी में प्रभावित कर सकें। दो योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से

0: चल रहा है और ये पाइपलाइन में ये योजना अभी समझ लीजिए कि फाइनल स्टेज पर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह की महिलाएं खुश हैं। डुमरी की लिलुआ देवी का कहना है कि सरकार ने गैस राशन से लेकर के उन्हें कई योजनाओं का लाभ दिया है।
2: हमारा नाम लिलुआ देवी लगो, घर डुमरी, जिला गिरिडीह। हमनी मोदी सरकार गैस दल बहुत दिक्कत है बोलो हमनी के, तो हमनी के लकड़ी पत्थर का मतलब कि भीन जालो, खाना पीना बने ही ना पारो लियो। मोदी सरकार हमनी के गैस दल हो तो बड़ी सुविधा कर लियो, हमने खाना भी बना लियो, अपना काम भी निकल जाए, बच्चा स्कूल भी भेज लियो। अब प्लस में हमनी मोदी सरकार दिले हो राशन दे लो, कम से कम 5-6 साल से बेसी हो गलो, फ्री राशन भी हमने खिलाए रहो, पैसा भी दे लो हमने के।
1: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के तहत गिरिडीह जिले के 99 गांवों का समग्र विकास के लिए सर्वे चल रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति से आच्छादित गांवों का विकास करना है। जिले के सरिया और डुमरी प्रखंड के एक एक गांव को शामिल किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
3: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार। सबसे पहले आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आप मुझे अच्छे लगने लगे। ये फिल्म है जिसका गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आवाजें उदित नारायण और साथियों की।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

इस गीत के साथ ही आज का झनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना के इस गीत से।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म बेलगाम का गीत, आवाजें शैलेंद्र सिंह और मोहम्मद अजीज की।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म दादागिरी का गीत। आवाजें कविता कृष्णामूर्ति और कुमार शानू की।

0: कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाजों में इस गीत के साथ ही आज का ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सात बजकर 7:45 होने को है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। आज के कार्यक्रम में हम आपको भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं जो बाल श्रम अधिनियम 1986 पर आधारित है। भेंट वार्ताकार हैं अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार और प्रियंका कुमारी, भेंटकर्ता हैं संजय कुमार केशरी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज और देश के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है, और वह मुद्दा है बाल श्रम। बचपन सीखने, खेलने और सपने देखने का समय होता है, लेकिन आज भी अनेक बच्चे शिक्षा और अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। बाल मजदूरी न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इस विषय के कानूनी, सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझने के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं हजारीबाग के जाने माने अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार। तो वकील साहब, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, थैंक यू।
1: वकील साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि बाल श्रम है क्या और इसे कानून किस प्रकार परिभाषित करता है।
2: देखिए, बाल श्रम का अर्थ हुआ कि बच्चों के द्वारा लिया गया श्रम, और बच्चों को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, बच्चे जिनका उम्र 18 साल से कम हो। हमारे यहाँ बच्चों को जिसका उम्र 14 साल से कम हो उनसे किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता है, और अगर 18 साल से कम के बच्चे हैं तो विशेष जगह पर ही उनसे कार्य लिया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाल श्रम, और इसी संदर्भ में बाल श्रम कानून बनाया गया है।
1: वकील साहब, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से प्रमुख कानून लागू हैं?
2: बाल श्रम को हमारे संविधान में भी अपराध माना गया है, और इसी के तहत में हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि बच्चे जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जा सकता है। संविधान में इस तरह की बात लिखी हो तो अवश्य की संदर्भ में कानून बनने चाहिए, और 1986 में बाल श्रम को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, पहला कानून वो था। और आज 2016 में भी इसमें विशेष रूप से अमेंडमेंट करके इस कानून में और भी सुधार किया गया है। तो ये कानून बनाए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए।
1: वकील साहब, जैसा कि भी आपने बतलाया कि भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं और 2016 में उन कानूनों में संशोधन भी किया गया है, इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधान क्या हैं जो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए मुख्य रूप से लागू किया गया है।
2: चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत में बच्चे जिनका उम्र 14 वर्ष से कम है उनका समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में और उनके विकास में होना चाहिए, इसलिए ये इस कानून की व्यवस्था की गई है। इसके तहत में ये तय किया गया है कि बच्चे किसी प्रकार के कार्य में वो न लगे, और अगर उनका उम्र 14 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है तो वो ऐसे कार्य में लग सकते हैं जहां पर उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिकता पर कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े, इस तरह की बात की गई। जैसे कि किसी भी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में उनको हम नहीं लगा सकते हैं, माइंस का काम जहां चल रहा हो वहां नहीं लगा सकते हैं, जहां पर भी

0: घंटे के लिए बीच में छूट दी जाएगी, जिसमें वो आराम कर सकेंगे और ऐसे जगह कार्य कर पाएंगे जहां पर उनके मानसिक दुष्प्रभाव न हो और शारीरिक दुष्प्रभाव भी न हो, ऐसी जगह पर वो काम कर पाएंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है कि बच्चे अगर कोई इंटरटेनमेंट का जगह है, जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन पर या फिर पिक्चर्स में वो काम करते हैं, तो उनसे काम वहां पे लिया जा सकता है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाएगा उनके उनसे काम लिया जाए लेकिन लगातार काम नहीं लिया जाए। इन सारे चीजों की व्यवस्था हमारे कानून में की गई है और ऐसा नहीं करने पर जो भी इस कानून को न मानेगा उसके लिए हमारे यहाँ दंड का प्रावधान है।
1: तो वकील साहब, बाल श्रम करने वाले नियुक्ता के लिए कानून में किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है?
0: देखिए, जैसे ही यह मालूम होता है कि कोई भी व्यक्ति बच्चे से काम ले रहा है और जो हाईली प्रोहिबिटेड है, जहां ऐसा करना प्रतिबंधित है, तो वैसी हालत में नियोक्ता को पहले सूचना दी जाएगी, नोटिस दिया जाएगा कि आपने ये गलत किया है, और उस नोटिस पर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना होगा। अगर ये सही पाया गया और उनका यह प्रथम अपराध है तो वैसी हालत में सजा का प्रावधान है जो 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक है, और अगर यह दोबारा से किया गया तो इसमें सजा का प्रावधान 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक है। साथ ही साथ इसमें 10,000 रुपया पहले अपराध में और दूसरे अपराध में 20,000 रुपये तक का फाइन की भी व्यवस्था की गई है। ये सजा का प्रावधान उनके लिए है जो ऐसे बच्चे को इम्प्लॉयमेंट देते हों जिनका उम्र 14 वर्ष से कम है या फिर 18 वर्ष से कम है, लेकिन उन्हें ऐसे जगह पे रखा गया है जहां पर उनके शरीर को और उसके मानसिकता पर दुष्प्रभाव पड़ने की आवश्यकता है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, आपको जानना चाहिए, जिसमें MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ आदेश दिया कि अगर इम्प्लॉयर ऐसा काम किसी से लेता हो तो उस इम्प्लॉयर को 20,000 रुपया प्रति चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के आधार उसको कॉम्पनसेशन देना होगा, ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही एक और PIL फाइल किया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके तहत विशेष रूप से ये कहा गया था कि बच्चे अब कभी भी किसी सर्कस में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर बच्चे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। तो इन दोनों जजमेंट के द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि बच्चों का बचपन कैसे बचाया जाए।
1: वकील साहब, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाना है, तो इस दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम सब मिलकर बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक बचपन दे सकें?
0: देखिए, ये जो बाल श्रम है वो सिर्फ भारत के लिए ही एक परेशानी का विषय नहीं है, सिर्फ भारत में ही बाल श्रम नहीं हो रहा बल्कि पूरे विश्व में बाल श्रम हो रहा है। और हम जब भी बात करते हैं बच्चों की तो पूरे विश्व के बच्चों की बात करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में 138 मिलियन बच्चे हैं जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। उन सभी को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारे समाज का, हमारे देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों के साथ एक तरह का अपराध हो रहा है। यही कारण है कि विश्व स्तर पर इसी 12 जून को हम लोग मनाते हैं, जिससे अलग अलग तरीके से हम लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सके, लोगों को जागरूक कर सके और बच्चों का जीवन हम बचा सके। इससे हमारे समाज का और हमारे देश का दोनों का ही कल्याण होगा। और हमारा आग्रह होगा हमारे सभी श्रोताओं से कि एक सच्चे नागरिक होने के नाते अगर आपको कहीं पर भी बाल श्रम दिखलाई दे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप तुरंत नजदीकी थाना में इसकी सूचना दें या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर इसकी सूचना दें और वैसे बच्चों को इससे बचाएं जिससे कि उनका, हमारे समाज का और देश का कल्याण हो सके।
1: तो वकील साहब, बाल श्रम अधिनियम और बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपने महत्वपूर्ण

0: संदेश हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा किया, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हजारीबाग की प्रियंका कुमारी। आइए इनसे हम जानते हैं कि बाल श्रम को दूर करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं। मैडम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: 1098 टोल फ्री नंबर है। कोई भी बच्चा जो प्रॉब्लम में है, जैसे कि किसी भी पब्लिक को, कोई बच्चा होटल में या किसी औद्योगिक परिवेश में कहीं पे काम करता हुआ दिखे या किसी के घरेलू वर्क काम करता हुआ दिखे और बच्चा छोटा है, 14 साल से कम उम्र का है, तो 1098 में कॉल कर सकते हैं। इसमें हम लोग बच्चा का हेल्प करते हैं। पहले तो जो श्रम अधीक्षक हैं उनको हम लोग सूचित करते हैं कि ऐसा हो रहा है, सारा बताते हैं उनको। एक टीम बनाई जाती है और बच्चा को रेस्क्यू किया जाता है।
0: तो शिकायत मिलने के कितने देर के बाद ये जो है आप लोग की कार्रवाई पूरी हो जाती है?
2: हम लोग तो उसी दिन मतलब इन्फॉर्म कर देते हैं श्रम अधीक्षक को, लेकिन उनके द्वारा थोड़ा टाइम लगता है टीम बनाने में। टीम बना करके सब जाते हैं, DCPO सर जाते हैं और भी मेंबर्स रहते हैं और बच्चा को रेस्क्यू करते हैं, CWC में प्रस्तुत करते हैं, बाल कल्याण समिति में।
0: मैडम, ये जो हेल्पलाइन तैयार किया गया है 1098, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है?
2: बच्चा का हेल्प करना। बात है कि कोई भी कहां जाकर शिकायत दर्ज करेगा, डायरेक्ट थाना में जाएगा, थाना शिकायत लेगा या नहीं लेगा, लेकिन यदि 1098 में कॉल किया जाता है तो हम लोग थाना को इन्फॉर्म करते हैं तो थाना काम करती है।
0: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाल श्रम की शिकायत दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया होती है?
2: आप किसी बच्चे को कहीं पे काम करते हुए देख, आप 1098 में कॉल कीजिए और सारा डेटा बता दीजिए कि इस होटल में या इस एक घर में या कहीं उद्योग कहीं कुछ चल रहा है, यहाँ बच्चा काम कर रहा है, हम देखे हैं, इतना उम्र का बच्चा है। यदि आप फोटो लेकर के सेंड कर सकते हैं तो सेंड कर दीजिए। और सारा डेटा देना होगा कि प्लेस कहाँ है, कौन सा होटल है, कितना बड़ा बच्चा है, सारा चीज बता देना है। फिर हम लोग ढूंढते हैं, पहुंचते हैं वहाँ।
0: जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारा किसी के व्यक्ति के साथ जो है वह दुश्मनी हो जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो क्या उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है?
2: जी सर, पूरा गोपनीय रहता है। हम लोग को खुद उसका नंबर पता नहीं रहता है। वो सिस्टम है ना, इससे हम लोग कॉल करते हैं, इसमें नंबर हम लोग को भी नहीं दिखता है। हम लोग इस सिस्टम से कॉल करते हैं, हम लोग कैसे बताएंगे किसी को? हम लोग का तो यही काम है गोपनीय रखना। हम लोग डायरेक्ट कॉल चला जाता है और हेल्प करते हैं, उसका बिल्कुल गोपनीय रहेगा।
0: तो श्रोताओं को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि अगर आप कहीं भी बाल श्रम की स्थिति को पाते हैं, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए देखते हैं, तो निसंकोच आप 1098 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय होगी। आगे मैडम, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बाल श्रमिक बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था है?
2: जब बच्चा को हम लोग रेस्क्यू करते हैं टीम बना करके, तो बाल कल्याण समिति में बच्चा को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट मैडम लोग रहती हैं, वो लोग निश्चित करती हैं कि बच्चा को आगे किस स्कूल में डालना है, कहाँ बच्चा पढ़ सकेगा, या कोई आश्रय में रखना है, या फिर बच्चा का जो रियल उसका घर है उसका पता लगाया जाता है, अपना घर बच्चा पहुँच जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि बिहार से या कहीं दूर से बहुत बच्चा लोग आकर यहाँ, बहुत ऐसा केस आया है, काम करता है, तो बच्चा को उसके घर पहुँचा दिया जाए या फिर कोई अच्छा स्कूल में डाला जाता है।
0: मैडम, 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाना है, तो इस दिवस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: मैं कहना चाहूंगी कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, इसको अच्छे से मनाने के लिए हम लोग प्रण लें कि हम लोग के एरिया में जहां हम आते जाते रहते हैं, कोई भी बच्चा बाल श्रम, छोटा बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का है या 14 से अधिक का भी है, पढ़ाई करते हुए थोड़ा बहुत वो काम कर सकता है, स्कूल जाते हुए इतना रहे, बिजनेस तो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन उससे कम का है तो कोई बच्चा काम न करे, किसी बच्चा का पढ़ाई न छूटे। हम लोग सब कोई मिलकर हेल्प कीजिए ताकि हर बच्चा स्कूल जाए, काम में फंसकर जिंदगी अपना आगे बर्बाद न करे। 1098 में कॉल कीजिए यदि ऐसा कोई मामला देखते हैं तो। बस मैं यही चाहूंगी, जो कोई भी आप लोग सुन रहे हैं, 1098 टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल कीजिए। चाइल्ड हेल्पलाइन 24/7 आप लोग का हेल्प करने के लिए तैयार।
0: तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और बाल श्रम से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा की, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी सर, धन्यवाद आपको भी।
0: दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने बाल श्रम की समस्या, इसके दुष्परिणामों तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। बाल श्रम केवल बच्चों के बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि देश के भविष्य को भी कमजोर करता है। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह सुरक्षित वातावरण में रहे, शिक्षा प्राप्त करे और अपने सपनों को साकार करे। दोस्तों, 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और यह दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने आसपास किसी भी बच्चे को मजदूरी करते देखें तो उसकी सहायता के लिए आगे आएं और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चे के हाथ में किताब हो, न कि मजदूरी का बोझ। इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: कानूनी सलाह कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाल श्रम अधिनियम 1986 पर आधारित यह विशेष कार्यक्रम। भेंटवार्ताकार थे अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार और प्रियंका कुमारी, भेंटकर्ता थे संजय कुमार केसरी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आखिरी खत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने। चेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, बंजू संतोष ठाकुर, विकास ठाकुर, प्रभात ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा। और खीरगांव माली टोला हजारीबाग से कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार और अरविंद मालाकार।

और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है आंधी। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, बरकाकाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम और अफजाल ताज, और पतरातु हजारीबाग से बेसिल खलको मधु ऋतु रचना मीतु श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण नदीम मनीषा सोरेन और परिवार के सदस्य।

पर। श्रोताओ, हम आपको याद दिलाते हैं विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण के तहत। अब हम आपको ले चलते हैं अपने रांची केंद्र कुछ ही पलों बाद।

0: अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व

0: सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के

0: प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी है उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी ज्योतिषी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब यह है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। यह कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बंबई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साए में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने। कहानी या किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह, क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था जी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगाशो साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों, है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
5: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगोल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
0: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
1: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
0: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
1: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता आप्टे के मुकाबले में कर चुका हूँ। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं, भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
6: मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी?
7: बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
6: मेरी बेटी कहाँ
7: बैठे, कौन सा बेटे?
6: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
7: हमें कुछ याद नहीं।
6: याद करो, प्लीज याद करो।
7: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
6: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
7: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
6: मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहाँ है।
7: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने के लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
6: मुझे एक बार उससे मिलने दो प्लीज।
7: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
1: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बनावा हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में, मणिमाल के बदले गले में विषधर को लटकाए, अपनी पार्वती को रिझाने को,
1: अपने पार्वती

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: वो ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
3: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी डोला, हाथों के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
3: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई
1: कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
3: नहीं नहीं, नहीं मगर कौन सी परी भैया? अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
3: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
3: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
4: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।

0: रहो।
1: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
2: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिर कर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म आबरू का गीत, आवाज मुकेश की।

रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं हेमलता और शैलेंद्र की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म अनुराग का गीत। और अब ये सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है बैजू बावरा।

और फिल्म रजनीगंधा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आवारा का गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। रात के 10:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सन 1967 में रिलीज हुई एम सादी

एक निर्देशित फिल्म बहू बेगम के कुछ नगमे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रोशन ने। फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार, ललिता पवार, हेलेन, जॉनी वॉकर और मुकरी ने। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म बहू बेगम के कुछ नगमे। आपने सुना मोहम्मद रफी को। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाजों में।

एक फिल्म से कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है और आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म बहू बेगम के कुछ नगमे। मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बहू बेगम के इस गीत के साथ ही आज का एक फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि